शब्दं सुर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो नानक ता का दास है।

कपड़े पैरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद सचार पढ़ै गुणै तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर।

पर पुस्तक संध्याबादंग सिल पूजस बगल समादंग मुख चूठ बपोखन सारंग त्रिपाल तिहाल बिचारंग गलमला तिलक लाटंग तो धोती बस्त्र कपाटंग जय जान सुब्रमंग कर्मंग सब पोकट नेचो कर्मंग कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे।

झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर सुचे नाया किए बैंज पिंडा तोए सुचे सही नानका जिन मन वसया।

अठसठ तीर्थ ने नावे, अठसठ तीर्थ जे नावे उतरे नाई मैल, जिन पट अंदर बार गुदड़ते पले संसार, तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार, रंग हसे रंग रूवे चुप।

बहुत सुबह आप बचाई, दर्शन हर देखन के ताई, कृपा करे ता सतगुर मिल है, हर हर नाम ते आई, जे सुख देता तुझे राधी, दुख भी तुझे ते आई, जे पुख दे तायत ही राजा, दुख विच सुख मनाई जी।

0: सब कृष्ण बुझाए राम।
1: आप जी रोजाना इस स्थान तो अमृतमयी बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। वडहंस राग दे विच पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन गुरु अर्जन देव महाराज जी वल्लों छंत रूप विच चौथे घर दे विच ए पावन शब्द जिहड़ा उचारण कीता, जिस दे पहले दो पदियां दा पाठ उरुदी विचार कल दे दीवाना विच आप जी सरवण कर चुके हो। अगलेरे दो पदियां दी विचार सतगुरु जी ने अज आप करवाउणी है। ये पावन अमृतमयी शब्द ये पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 577 दे उपर सुभायमान हैं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करते ने कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जे असी अपने मन की हालत देखिए तां साडा मन जिहड़ा है वो तृष्णा दे वस है, जिदे करके मन जिहड़ा है वो कदे संतुष्ट नहीं हुंदा। पर जे वाहिगुरु जी सानू गुरु दे राही परमेश्वर दा नाम मिल जाए और असी नाम दा अभ्यास करदे होए तुहानू पा जाइए, तुहानू चंगे लग जाइए, तां साडे मन दी तृप्ति हो सकती है, तां साडा मन जिहड़ा है ये रज दे विच आ सकदा है। पर जे कृपा तुहाडी होवे तां इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा करदे ताओ भाणा तां तृप्त अघाए राम। हे राम, हे वाहिगुरु जी, तां अंदर तृप्ति है, तां अंदर जिहड़ा है वह रज है। ताओ भाणा जे असी तैनू पा जाइए, जे असी तैनू चंगे लगन लग जाइए। पर वो चंगे किदां लगना है? सतगुरु दे राही, गुरु दे द्वारा। आरंभ दे विच महाराज जी ने आख्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख परमेश्वर नूं असी ताई चंगे लगांगे आत्मक तल ते जे सतगुरु जी दी पहला कृपा होएगी। जे असी गुरु महाराज की कृपा दे पात्र बनांगे, इस वास्ते ताओ भाणा तां तृप्त अघाए राम। हे वाहिगुरु जी, जे असी तैनू चंगे लगन लग जाइए प्यारे, तां तृप्ति हो सकती है, नहीं तो होर कोई दूसरा तीसरा उपाय नहीं। हुण प्यारे किदां लगना है? असी रोज़ वाहिगुरु जी अगे बेनती करदे हां, फेर कह अगे रखी है जित दिसै दरबार, मूहों कह बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। भी असी उन्हूं प्यारे लगन लग जाइए। महाराज कहिंदे फिर सतगुरु दे राही एक कम कर तू, अमृत वेला सच नाओ वड़े आई विचार। अमृत वेले नूं संभाल, और वड्डे दियां वड्डियाईयां तू जड़ियां ने ओ कर। हुण वड्डे दियां वड्डियाईयां किवें करनियां ने? गुरबाणी दे राहीं, शब्द दे राहीं। जदों असीं वड्डे दियां वड्डियाईयां करांगे शब्द दे राहीं तां की होएगा? अमृत बाणी ने साडे मन नूं शीतल कर देना है, मन नूं ठंडक मिलनी है। वो ठंडक जड़ी बाहर दे तल ते किसी भी प्रकार किसी भी तरीके नाल मन दे तल ते नहीं पाई जा सकती। हाँ, तन करके जिवें जेठ हाड़ दा महीना अत दी तपश वाला हुंदा है, उदे विच भी असी अपने तन नूं ठंडा ठार रख सकते हैं, चंदन दा लेप कर सकते हैं। चलो एक दिन समा बदलेगा ते पोह माघ दी ठंड आ जाएगी, फिर भी अपना शरीर नूं ठंडा कर लांगे। गर्मी जाएगी, गर्मी दी रुत सर्द रुत आएगी ते असी कहांगे हुण सानू शांति मिली, नहीं तो गर्मी दे नाल बहुत बुरा हाल है। शरीर करके तो सानू राहत मिल जाएगी, पर गल तो मन दी है। मन तो बारह दे बारह महीने ही अंदरों तप रहे है तृष्णा दी अग्नि दे विच। इसलिए महाराज ने कहा बाहर दी ठंडक नाल अंदर दी खेड नहीं बननी। चंदन चांदन सरद रुत मूल ना मिटई काम, क्योंकि तृष्णा दी अग्नि विच मन सड़ रहा है, तन नहीं। विकारां दी अग्नि दे विच मन सड़ रहा है, तन नहीं। जे तन नूं किते अग दा सेक लग जाए ते मलम पट्टी कीती जा सकती है, इलाज कीता जा सकता है। पर जिहड़ा मन अंदर विकारां दी अग्नि दे विच झुलस रहा है, सड़ रहा है, उदा इलाज किदां होएगा? वो होएगा परमेश्वर दे नाम दे नाल, ये सच्ची बाणी दे नाल। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै, परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ। जलन बुझ गई, मन शीतल हो गया, मन नूं ठंडक मिल गई। सतगुरु जी दे चरणां दे विच जुड़ के जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। इस वास्ते महाराज जी समझाउंदे ने कि हे वाहिगुरु जी, मन दी तृप्ति तां है, मन तां रज विच आवेगा, तो भाणा जे असी तैनू पा जाइए, तैनू प्यारे लगीए। मन थिया ठंडा सब तृष्ण बुझाए राम। ये वाहिगुरु जी, मन उदों ठंडा ठार होएगा, उदों ये मन शीतल होएगा जे नाम दे राही किते अंदर तृष्णा दी अग बुझ जाए, क्योंकि जदो अग बल रही है फिर ते ठंड नहीं मिलनी, तपश है फिर। पर जे ए अग बुझ जाए फिर जाके ठंडक मिलनी है। मन थिया ठंडा, हुण इत्थे तन दी गल नहीं हो रही। जे असीं गुरु अर्जन दे महाराज जी वल वेखीए तन ते अग दे विच झुलस रहा है, पर मन विच ठंडक है, मन ठंडा पिया है, क्योंकि बाहर दी अग दा सेक मन नूं नहीं लग रहा, मन दे विच नाम दी ठंडक बनी हुई है। जिवें बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होवे, टैंपरेचर बहुत ज़्यादा होवे, बाहर अग बलदी होवे, कई बारी असी कहने ना भी बाहर तां अग बल रही है, अंदर कमरा बिल्कुल ठंडा होया होवे एसी रूम दे विच, जदों अंदर आईए ते ठंड, बाहर आईए ते तपश, पैर भी जमीन ते नहीं रख हुंदा, इन्नी ज़्यादा तपश है। बस यही साड़ी हालत है। जे नाम नाल जुड़ जावांगे ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਵਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਰੂਮ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਏਸੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਵਰਤਾਈ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਤਵੀ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਥੀਆ ਠੰਡਾ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਓ ਭਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੀਏ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਥੀਆ ਠੰਡਾ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ।

मन बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। हुण मन दे विच इह जिहड़ियां अग्नियां ने ना, विकारां दियां, तृष्णा दी अग है, ईरखा दी अग है, क्रोध दी अग है, इन्हें बड़ी तबाही लियांदी है संसार विच। देखो तुसी, क्रोध दी अग ने किन्नियां नूं साड़ दिता, ईरखा दी अग ने किन्नियां नूं साड़िया है, नफरत दी अग ने किन्नियां नूं साड़िया है। असी अज भी वो समा नहीं भुलदे आ जदों इस अग ने पता नहीं किन्नियां नूं साड़ दिता, जदों गलां दे विच टैर पा के अग ला के साड़िया जा रहा सी। 84 दे उस समें दे विच घरां दे घर अग दे हवाले करके साड़ दिते गए। वो अज भी वो कादी अग सी, वो नफरत दी अग सी, वो ईरखा दी अग सी, जिन्हें सारा कुछ साड़ के रखता। अज भी सानू उहदा सेक महसूस हुंदा है। जदों असी ननकाणा साहब दा साका देखते हैं, उदे विच भी अग दे विच किन्ना कुछ साड़ के रखता समय दे महंत ने, क्योंकि वह ईरखा दी अग्नि विच साड़ रहा है, नफरत दी अग विच साड़ रहा, उन्हें जिहड़ा आया उन्हूं साड़ दिता। भाई लक्ष्मण सिंह धारोवाल जिन्हां नूं जंड दे नाल बन के साड़िया गया, इस वास्ते बहुत ने ऐसे अपां समाज दे विच देख सकते हैं कि नफरत दी अग ने किन्ना किन्ना नूं साड़िया है, ईरखा दी अग ने, क्रोध दी अग ने घरां दे घर साड़ दिते। क्रोध जिहड़ा सी इह वी इक अग है, अग्नि, पता नहीं किन्नियां दे रिश्ते सड़ गए, घर बार सड़ गए। पर महाराज जी कहिंदे आ वी मन ईरखा दी अग्नि तो, नफरत दी अग्नि तो, क्रोध दी अग्नि तो बच सकदा है। वह इक्को ही तरीका है, परमेश्वर दा नाम, वह है आ शब्द, ये गुरबाणी। सतगुरु दे राहीं जिन्हों शब्द मिल गया, मन थिया ठंडा, उन्हों दा मन शीतल हो गया, ठंडा ठार। चूकी डंझा, जिहड़े मन दे विच जलन हो रही सी वह भी खत्म हो गई, जलन हो रही सी। कई बार ना किसी नूं कोई खुशियां मिल जाण ते बंदे नूं बर्दाश्त ना होण ते वह अंदरों ही अंदर सड़दा रहिंदा है, अंदर ही अंदर सड़दा रहिंदा है, ते वह उहदियां हरकतां फिर दस दिंदियां ने भी इहनूं किन्नी जलन हो रही है। भी सुख तो किसी के घर आया, खुशियां किसी के घर आईया, तू एवें अंदरों सड़ी जाना। कई बार आप कह दें ना भी फलाना बंदा तो बड़ा सड़दा है, फलाने बंदे नूं ते बड़ी जलन हुंदी है, वो तो कदे किसी का सुख खुशियां बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। आम आपां इह शब्दावली वरतदे आं भी फलाने नूं बड़ी जिहड़ी है वह जलन हुंदी है। इहदा मतलब मन अंदर सड़दा है, मन नूं अंदर जलन है, तन नूं नहीं। हुण उह जिहड़ी जलन सी उह वी मुक गई, खत्म हो गई, जदों अग ही बुझ गई जिन्हें साड़ पैदा करना सी, ते उह फिर जिहड़ा साड़ा हो रहा सी उह वी खत्म हो गया, साड़ नहीं पैंदा हुण, जलन नहीं हुंदी, उह वी नाल खत्म हो गई। मन थिया ठंडा, मन नूं जिहड़ी जलन हो रही सी दूजियां दियां खुशियां, दूजियां दे सुख देख के, पृथ्वी चंद ते बीबी करमो नूं जलन कादी हो गई, ये क्यों सड़ बल गए। जदों गुरु अर्जन दे महाराज जी दे घर विच पुत दी दात आ गई गुरु हरगोबिंद साहब दे रूप च, ते पृथ्वी चंद ते करमो सड़ बल गए। जठाणी ते जेठ ये दोवें सड़ बल गए, क्यों? क्योंकि मेरी दराणी दे घर पुत्र आ किवें गया। हालांकि रब ने करमो नूं भी पुत्र दिता होया, वो उहदे विच उहनूं खुशी नहीं है। मेरे घर पुत्र है ठीक है, पर मेरे रिश्तेदारां दे कोई औलाद नहीं होनी चाहीदी।
मेरा घर वड्डा होना चाहिदा पर मेरे रिश्तेदारां दा नहीं होना चाहिदा। मेरे परिवार मेरे बच्चे जड़े ने वह लखां करोड़ां दे विच होने चाहिदे आ पर मेरे रिश्तेदारां दे बच्चे नहीं होने चाहिदे। जलन ये आगी है ना, जे हो गए तो जलन फिर साड़ा पै जाना भी ये किदां हो गया ये किवें हो गया। पृथ्वी चंद ते करमों अंदरों क्यों सड़ बल गए ने, क्योंकि ये नहीं सी चाहते, करमों नहीं सी चाहती भी मेरे दराणी दे घर विच पुत्र कोई औलाद आवे, ते जदों आ गई दात ते सड़ बल गई, हुण नींद नहीं आउंदी चैन नहीं। हुण ये चाहती है कि मैं जिहड़े माता गंगा जी दे घर दे विच दात आई है मैं वो रहन नहीं देनी। ऐसी जलन अंदर, ऐसी अंदर कह लो कि साड़ा पैदा हो गया, वह हरगोबिंद साहब जी नूं मिटाउण लई मारन लई तैयार हो गए। कदे दाई नूं भेजदे आ, कदे उस दाए नूं ब्राह्मण दे रूप च जहर दे के भेजदे आ, कदे सपेरे नूं भेजदे आ सप्प छड्डण वास्ते, क्योंकि वह अंदरों सड़ रहा है। ये जड़ा हरगोबिंद साहब दे रूप विच दात आई असीं ये रहन नहीं देनी। इस ईरखा ने नफरत ने बड़े घर जड़े ने वो तबाह कर दिते ने। पर ये ठंडक मिलनी किदा है, सतगुरु दे शब्द दे राही। तां महाराज जी कहिंदे ने मन थिया ठंडा, मन शीतल हो गया, उदे नाल नाल चुकी डंजा जड़ी जलन हो रही सी वह भी मुक गई। चुकी मतलब मुक गई, डंजा जलन जड़ी अंदर जलन हो रही सी साड़ा पै रहा सी वह भी खत्म हो गया। पाया बहुत खजाना, फिर उस तो बाद मेरे मालक ने मैनू बहुत खजाना दे दिता। जिहड़ा पाया बहुत खजाना, जिहड़ा वाहिगुरु ने त्रुट के मैनू नाम दा खजाना

मन दियां इच्छावां पूरियां हो गईयां, मन दियां ख्वाहिशां पूरियां। जिन्ना चिर संग नहीं सी कीता उदों तक मन दियां ख्वाहिशां होर सी। जदों तक इह तन नाल जुड़िया सी उदों ख्वाहिशां इच्छावां होर, पर जदों इह भगती दे विच लीन हो गया इहदी ख्वाहिश इहदी इच्छा होर सी। ओह की सी? परमेश्वर दा मिलाप, अपने मूल तक पहुँचना, अपने मूल नाल जुड़ना। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा, सारियां इच्छा पूरियां हो गईयां। पूरी आसा जी मनसा मेरे राम, ये शब्द तुसी कदों सुनदे हो? जदों आनंद कारज हुंदा ना, आनंद कारज दी संपूर्णता तो बाद तुसी ये शब्द जड़ा कीर्तन रूप विच अक्सर सरवण करदे हो वी मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरा आनंद कारज सफल हो गया, जीवन साथी जिहड़ा सी ओह मैनू मिल गया। बड़ी वारे बेनतियां कीतियां भी ये कल्ले शरीरां दा मेल नहीं, ये रूहां दा मेल है। जदों आत्मक जिहड़ी साडी रूह है ओह परमेश्वर दा मिलाप होएगा, उत्थे ये शब्द है पूरी आसा जी मनसा मेरे राम। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जदों मन नू अपना स्वरूप मिल जाएगा, आत्मक रूप मिल जाएगा, फिर मन भी कहेगा कि पूरी आसा जी मनसा मेरे राम, कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरे मन दी ख्वाहिश जड़ी सी वह पूरी हो गई। वाहिगुरु जी ने मेरे ते तरस कर दिता, मेरे ते कृपा कर दिती। हुण इह भी ध्यान रखियो थोड़ा जा, जिदे जिदी आस पूरी हो गई, मनसा पूरी हो गई, वह फिर मैं नहीं कहिंदा भी मैं आ कीता सी ते तां मेरी आस पूरी होई। उहदे अंदर फिर मैं दी आवाज नहीं आउंदी, वह होमें दी बोली नहीं बोलदा भी मैं इन्नी भगती कीती, इन्ना पाठ कीता, इन्ना सिमरन कीता तां मेरी मनसा नहीं। अगली पंक्ति सुनियो, जिहड़ा इह कहिंदा भी पूरी आसा जी मनसा मेरे राम, उहदे अंदर कोई होमे अहंकार दा कण नहीं हुंदा, वह तां सगों शुकराना करदा है। वह तो यह बेनती

हे वाहिगुरु, हे राम जी, परमेश्वर सब गुण तेरे ही ने, मेरे विच तां कोई गुण है ही नहीं सी, मैं तां निर्गुण, मैं ते गुणा तो खाली सी, मेरे विच तां गुण ही नहीं। ये भी बड़ी बार बेनती, कुछ गल्लां रिपीट करनियां हुंदियां ने शब्द दे मुताबक। जे आपां गुरु महाराज दी संगत च बैठे हैं, जे सतगुरु जी सानू ये वडियाई दे रहे हैं, तो ये उस मालिक ने सानू गुण दिता है। जे अपने अंदर देखांगे तो साडे पल्ले ते गुण है ही कोई नहीं, अंदर तो अवगुण भरे पए आ। जे गुण नहीं है तो की है, अवगुण है। जे चंगियाईयां नहीं तो बुरियाईयां, एक चीज तो होएगी ना अंदर। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। वाहिगुरु जी मैं निर्गुण हाँ, मेरे विच तां गुण है ही कोई नहीं। ये तां तुसी पता नहीं किदां तरस कर दिता ते ए अवस्था प्राप्त हो गई, नहीं ते अवगणा नाल ते इस अवस्था तक कदे पहुंच ही नहीं सी होना। असी ते अरदास करदे हां कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, ते जिहड़ी आ अवस्था है ये शुभ गुण नाल प्राप्त होनी है, जिथे असी कह सकते हैं पूरी आसा जी मनसा मेरे राम। पर ये गुण दिता किने है? उस मालिक ने तरस करके, मेरे अवगणा करके नहीं। सतगुरु महाराज कहिंदे जिहदे मन की आस पूरी हो गई, जिस मन नू अपना मूल मिल गया, मन तू जोत स्वरूप है, जिहड़ा अपने मूल नाल जुड़ गया, जिन्हों परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, उदी मन की खाहिश इच्छा पूरी होई, पर उस तो बाद उन्हें माण नहीं किया, उन्हें अहंकार नहीं किया, उन्हें सगों शुकराना करके आख्या मोहे निर्गुण जीओ सब गुण तेरे राम। हे राम जीओ, रब जीओ, वाहिगुरु जीओ, ये सब तेरे गुण करके है, मेरे अंदर तो एक भी गुण नहीं सी, एक भी जिदा मैं माण करके कह सका कि मेरी आ इच्छा पूरी हो गई, मेरे मन की ख्वाहिश पूरी हो गई। ये सब तुहाडी कृपा जो तुसी गुण बख्शे ने, ये उदे सदके कामयाबी सफलता मिली।

ते सुख हुआ तित करन हदवाजे आनंद सुनो विटपागी हो सकल मनोरथ पूरे पार वरम प्रपाया त्रे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची वाणी संत साजन पय सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास ही सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस जिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कल नौ निदा बिताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता ते नाम प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर के बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरिया

तन मन हुए निहाल, जागुर देखा सामने, बेसर नहीं दाता, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक जाओ एहो सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सुही महला तीजा, कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना सलाहे जो मर वंज से, लोका ना सलाहे जो मार खाक थी।

पौड़ी वड्डियां वड्डा पार तेरा अमृत बारंग प्रंग नेक ना जपन करत बा जिया द्र जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा कर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत तेज अपना पजर सर्ब कला भरपूर दिस जत कता नानक दासन दास तुदया गया बिनवता। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुदाई दाया खेल सागल जागत

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेके आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास भी सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइय निष्ठ है सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिंदा नाम जपिया वंट छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता। तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी किसा स्वासा नाल निवाही तना दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियायत। देख तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जियां दे दर्शन इसनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दी सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दार। सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे निभानियां दे मान नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट सचे पिता वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी वेखै। शब्द कीर्तन से पौड़ियां आनंद साहिब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जियां दे दर ते। समूह साध संगत की हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटा बांदर प्रवान करनी आ। यात्रावां सफल करनिया दरों घरों गुरु सिखी जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शनियां। कलंगी धर सचे पातशाह जी ओ आप जियां ने कृपा करनी मेहरामत करनी। आउण वाला समा आप जियां दी याद आप जियां दे प्रेम दे विच बतीत करवावना। आप जियां दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजर दर प्रवान होवे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन जाउन दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला।

दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना सलाहे जो मर भंजसी लोका ना सलाहे जो मर खाक थी।

नाम सज्जन मिले ना बिछुड़े जे अनदिन मिले रहन इस जग में मिले जानिए नानक सच लहन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पौड़ी बड़ी हमडा पार तेरा मृतवा रंग प्रंग अनेक ना चपन करतवा जियांद्र जियो सब जाला सब तेरे बस तेरा कृपला तेरे कर आनंद बुदाई तुत कर मान महता तेजा अपना आप जर सर्व कला प्रपूर दिस जत कत नानक दसन दास तुदया गए बिन बतासलो
1: पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਵੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਦ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਊਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿੰਹ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ
तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मने में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान। ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सदबल जाइए, तेरा अंत ना परावरिया सब निदान दस अष्ट सदान। ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सदबल जाइए, तेरा अंत ना परावरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा सब त्याँ वहीं सब त्याँ वहीं तुद जी। हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी, तू जियाँ का दातारा हर ते आवहो संतो जी। सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी। क्या नानक जंत विचारा तू घट घट यंत्र सर्व नरंतर जी। हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी। सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी। हाँ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी। जन नानक तिन कुरबाणा हरते आवहे हरते आवहे तुद जी। से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जिन हर त्याया जी। तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी। भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी। तप तापहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी। कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भरे जन नानक जी। जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुझ जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई तुझे आपे पावे सोई वरत जी। तू आपे करें सो होई तुझे आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुझे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सब सिक्का जानोई आसा महला चौथा। तू करता सचियार मिंडा साई जो तो पावे सोई थीसी। जो तू दहें सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी ते आया। जिसनो कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया
तुदया बिछोड़या आप मिलाया, तू दरिया सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खे, बेजोग मिल विछुड़या संजोगी में, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखें जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े भैले निवासा, पाणी पावक तिन्हें किया, पंकजो महो पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मान खुदे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साद संगत भज केवल नाम, संयाम लाख पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहर राया, कहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जब तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहर राया, कहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी क्रोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवैरन को आय संग्रिये, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छा कोई अवर ना त्याऊ, जो वर चहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिखा मार तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मुहे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिवजू अवतरा।
काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सवलोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट गए अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानते। चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने। जवद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तव देह अपारा। जवया करख कर तुह कबहू, तुम मैं मिलत देह धर सबहू। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनीन अनाद असंब। ताका मूड़े विचारत भेदा, जाको पीवना पावत बेदा। ताको कृपाहणे अनुमानत, महामू

हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवरना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा भरता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियाँ एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सचा नाम मेरा धरो वाजे पंशब तित कर सुभाग्य कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनाहद बाजे आनंद सुनहौ बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते बनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर उरे बिन्नवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदा मणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावै जे को पहुँचाए तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसरो स्लो महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई
तरस पायो तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले तीवा तन मन थीवे हरे आ तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ।

0: कोई भी जब खाली ना जाए संगत जी सिमरो सिमरो एक मन एक चित हो के हाजरी भरियो प्यारे हो सिमरो
1: वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी। कीर्तन करद्या बाणी पढ़द्या बेअंत प्रकार दया भूलों गलतियां हो गई होनगियां सतगुरु जी बख्शनहार हैं, संगत बख्शणयोग है, बख्श लैना जी। कोटान कोट धनवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हों की अपार कृपा सदका ये दीवान सजदे हैं। कोटान कोट धनवाद इतने की प्रबंधक कमेटी का, आप रब रूप साध संगत का, जो इतना समा लैके लंबे समय तक आप जी जुड़े बैठे हो, बहुत ही प्यार माण बख्शते हो। आप सारे का कोटान कोट धनवाद है जी। आओ हूँ आनंद साहब जी का पाठ करिए।

0: गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साज तीर्थ मजना, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां।

सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैपंगुर प्रसाद आसा महला पहला वासलोकाना श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे के तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने देहा

0: दास सर अपर परे छुट्टत परवाहा अम्य अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पी वह संत करह मन मजन पुब जिन हो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मातर ते उदर तरे कव कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सर अपर परे सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज परकास्या अभय निरंजन करह लहा सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करे कव कल ठकुर हर दास तने गुर राम दास सर अपर परे अन पौ उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मिटिया जन्मांत मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कव कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सर अपर परे कव कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सर अपर परे
1: अपर परे पायो अपार रिद अंतर तारयो दुख पंजन आत्म परबोध मन तत बिचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर

देखत दरिद्र जावै, नाम सुन धान पावै, गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो। सतगुर नाम एक लिव मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप को कत होवै जियो।

मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पात साहो सिर सहा दिशा हो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा हो सपना श्री वाहिगुरु साहेब।